0: आपका नाम माही है तो ये गाना आपके लिए. कितनी बार बुलाएगा ये अरिजीत आपको, ओ माही ओ माही ओ माही.
1: Oh Mahi indeed. In the vocals of Arijit Singh, playing for you right here on East of M, Kenya's premier Asian mix. Inevitably Shah Rukh Khan again on the playlist. Thank you so much.
0: Not intentional at all.
1: Well Mahi, if it's your birthday, bus both ho gaya, because we've got a special announcement just for you.
0: Hey Jamzu,
2: इस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो?
3: अरे साहब, मैंने आपको इनवाइट भी किया था कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है.
2: तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं.
1: As much as we're laughing, it's also a bittersweet moment to say goodbye and farewell to Nana Patekar, and his legacy will continue to live on in the movies, in the songs, and all your favorite scenes as well.
0: But there's one shy he had actually talked about in this moment.
4: मौत के बाद जिंदा कौन रहता है?
5: रहता है 10 मिनट तक दिल, 20 मिनट तक दिमाग और 4 घंटों के लिए आंखें. तो 4 घंटों में आंखें जो अपनों का रवैया देखती होंगी, उसके बाद मुर्दे को तो मौत तोहफा लगती होगी.
0: वाह, मुर्दे को मौत तोहफा लगेगी. यू नो व्हाट, एक्चुअली अ रियली सैड पार्ट ऑफ लूजिंग एंटायर बॉलीवुड इज नाउ मॉर्निंग अ डेथ ऑफ कोर्स नाना पाटेकर. एंड वी आल्सो, बट वी वांट सेलिब्रेट हिम एंड हिज लाइफ, एंड ऑफ कोर्स ही वाज अ मूवी ब्लफ मास्टर एज वेल. सो वी आर गोना लीव यू दैट सॉन्ग कॉल्ड सबसे बड़ा रुपया.
1: एब्सोल्युटली. वेल थैंक यू सो मच फॉर योर लव, योर मैसेजेस एंड योर कंपनी. कमिंग अप नेक्स्ट इज बेमी सालंदाज विद परवीन जी फ्रॉम द आरजे एंड द थ्रोबैक थर्सडे. इट्स टेक केयर, सी यू एंड बाय.

0: और समय हिंदी फिल्मी दुनिया के मारूफ अदाकार माया नाज अदाकार चल बसे हैं, उम्र 75 साल। सम गोवा के अपने एक फ्लैट में बेहोश पाए गए। बेटे जो इनके हैं उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स की टीम को रवाना किया गया, वो अकेले थे फ्लैट में जब नाना पाटेकर ने कॉल किया और कहा कि मेरे सीने में बहुत शदीद तकलीफ है, शदीद तकलीफ है। बस ये आखिरी उनकी कॉल थी। टीम पहुंची वहां मदद के लिए डॉक्टर्स की, लेकिन आप बेहोश थे और कोई सांस बाकी नजर नहीं लग रहा था कि ख़त्म, मतलब कि दम तोड़ दिया है। फिर भी अस्पताल लेकर गए, वहाँ रिवाइव करने की कोशिशें नाकाम हो गई। 45 मिनट डॉक्टर्स कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी बस उनका वक्त आ गया हुआ था। हम बात करेंगे उनकी, लेकिन समझ, एक कहते हैं कि इनकी इंटरव्यू आखिरी मानी जाती है, जो तीन और हैं इनके साथ और वो इनसे बातें कर रहे हैं। हम छोटी सी झलक आपको सुना दें अगर हो सके।
1: अगर ऐसा डायरेक्टर है तो उसको हाँ बोलने में दिक्कत नहीं होती, इमीडिएट हम हाँ बोल देते हैं। लेकिन सभी डायरेक्टर उतनी औकात वाले अगर हो तो ठीक है, क्यों नहीं वेलकम बना। मतलब
2: अरे यार कमाल, मैं तो आई वुड लव टू डू दैट। ऐसे समय में रह रहे हैं ना जहाँ हर आदमी को चोट लग जाती है।
1: संजय भंसाली ने हमको दिया था खामोशी में, तो डायलॉग नाना पाटेकर बोलेगा, तो वो तो गूंगा था मेरा कैरेक्टर, तो उसको वो कॉन्फिडेंस था कि गूंगे के रोल में वो कर पाए।
2: मतलब ये कि जो कुछ भी हुआ वो इसकी वजह से हुआ, इसको सुन के हुआ।
1: बिल्कुल, हर एक की सोच अलग है, हर अलग तरीके से परसीव करता है। हम कैसे सबको जो अच्छा लगे, हमें जो अच्छा लगे हम करेंगे, सामने रखेंगे। अच्छा लगता है तो देख लो, नहीं अच्छा लगता है तो मत देखो। मैं कल मरने वाला हूँ, इस पर अगर मैं भरोसा करूँ ना तो आज अच्छा जी सकता हूँ। मैंने कहा पंकज तू इधर यहाँ क्या कर रहा है? तो कहता है कि छोटा सा। मैंने कहा ये ऐसा रोल क्यों करता है तू?
0: और सामिन ये है बात जो कि आपको मैंने सुनाई है, इसलिए सामिन कि आप देखें कि मरने के लिए वो तैयार थे। सभी कह रहे हैं कि बातें करते थे मरने की, और मैं आपको बताऊंगी कि क्या करके गए हैं अपनी मौत के लिए तैयारी करके गए हैं नाना पाटेकर, आखिरी ख्वाहिश जाहिर करके गए। सामिन क्या आखिरी ख्वाहिश थी? कि उनको पुणे के फार्म ले जाया जाए, पुणे में इनका कोई फार्म है, और आखिरी रस्म जो क्रीमेशन की है, दाह संस्कार जिसको कहते हैं, अंतिम संस्कार, वो उनके फार्म पर होगा। अब महाराष्ट्र की सरकार जो है उन्होंने स्टेट फ्यूनरल देने का ऐलान किया है। बिल्कुल सही है फैसला, होना ही था। इतने बड़े अदाकार मराठी और हिंदी फिल्मों में आला तरीन किरदार निभाने वाले को सरकारी रस्मों से अलविदा किया जाएगा, और आज ही किया जाएगा।

0: और सामिन नाना पाटेकर की बात कर रहे हैं तो आखिरी लम्हात में भी बस मजाक सामिन जो इनका ह्यूमर था वो कोई आम ह्यूमर नहीं था बड़े इंटेलिजेंट थे नाना पाटेकर तो बस मजाक की आदत थी तो कहने लगे कि देखो एक इंटरव्यू में कि जब इनकी इनका निधन हो जाए तो सूखी लकड़ी हो ड्राई वुड बारह मन होनी चाहिए कहते गीली लकड़ी नहीं इस्तेमाल करें इनके शव को आग की नजर करने के लिए गीली लकड़ी ना क्योंकि गीली लकड़ी का जो धुआं है ना वैसे ही लोगों के आंसू निकल आते हैं तो जो नहीं भी दुख में वो भी रोते दिखेंगे इसलिए सूखी लकड़ी होनी चाहिए समिन फिर क्या होता है कि इनके ये आई मीन इतने साल इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे तो 1.5 करोड़ रुपीस रखे कि एक लग्जरी गाड़ी लेता हूं तो अचानक क्या हुआ एक बार टेलीविजन के सामने खड़े हैं न्यूज तो ऑफ कोर्स थे बाखबर रहने वाले थे तो देखा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं एक किसान ने आत्महत्या की और कैसे उसके बच्चा उसकी बीवी और बच्चे किस तरह से बिलख रहे हैं तो गए 1.5 करोड़ जो गाड़ी के लिए रखा था उसको फाउंडेशन में बदल कर किसानों की मदद के लिए सारी रकम दान कर दी पूछा हम क्यों आसाइशों के पीछे भागते हैं आसाइशों का सामान क्यों खरीदते रहते हैं लग्जरी तो हमारे भाई मर रहे हैं यानी किसान अपनी जान दे रहा है क्योंकि उसके पास कोई आमदन नहीं रही और हम यहाँ ये कर रहे हैं हरगिज नहीं समय आप देखें किस तरह के वो थे इंसान
1: इट्स 10:20
2: एक कहानी निधि दत्ता की जुबानी खुल रहा है फिर से कहानियों का पिटारा कहानी कभी किसी मशहूर लेखक की कभी किसी अनजानी सी दुनिया से निकली हुई कभी दिल को छू लेने वाली और कभी सोचने पर मजबूर कर देने वाली कभी हल्की फुल्की और कभी गहरी मगर हर बार एक नई कहानी एक नया किरदार और इंसान को देखने का एक नया नजरिया तो सुनने के लिए ट्यून इन कीजिए हर सैटरडे शाम को 4 बजे कहानियों की बस्ती फिर से बसने जा रही है तो आइएगा जरूर
3: Happy Customer Service Week with East FM.
4: My name is Rose Nyamwea, Head of Customer Experience at Cooperative Bank. As we celebrate Customer Service Week, we extend our sincere appreciation to you, our customers, for your continued trust and loyalty. Whether you engage with us through our branches, contact center, digital banking platforms, social media channels, or feedback platforms, your voice guides our efforts to serve you better every day. We are also delighted to mark this occasion together with Radio Africa, helping us stay connected to the communities and customers we are privileged to serve. Thank you for being at the heart of everything we do. From Cooperative Bank, Happy Customer Service Week.
5: Every brand has a story. The big idea, the exciting new product, the offer your customers will love, the service you've worked hard to build. And when you've got something this good, why not give it a bigger stage? Give your brand the kind of exposure that gets remembered with East FM. Whether you're launching, promoting, growing, or celebrating a new milestone, we'll help you turn your message into something people remember. Advertise with Radio Africa Group. Whether you'd like to advertise on the Star, our digital platforms including Mpasho and even on air with East FM, call us on 0711-046-200 or email sales@radioafricagroup.co.ke. Your brand has a story. Let's give it the audience it deserves on East FM.
6: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.
7: तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी ओढ़ो

और अब देखते हैं पर्दे पर समिन, सबसे पहले जो मैसेज आया है लंदन से आया है शबीर अहमद, आपका बहुत मेहरबानी, आपने सलाम भेजा है सभी को। और यहाँ पर हैं एक बगैर नाम के, यही मैं कहती हूँ कि आप अगर नाम लिखते हैं तो अच्छी बात है, ओके देयर इज नो नेम। अब देखते हैं शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका क्या लिखा है, कहते हैं क्यूली क्वीली इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज फर्स्ट नोन फीमेल सुसाइड अटैकर। क्वीली, she covered herself with oil, set herself on fire and entered a British ammunition depot. Oh my God. Today, Quilly remains one of the lesser known women of India's resistance to colonial rule. कहते हैं कि एक औरत ने आत्म

0: conditions are lead link affected children to appropriate care. That's the news update on East FM.
1: East FM News. East FM. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: Bemisaal Andaaz with Parveen Atom.
3: और सामिन अब देखते हैं कि पेरी ने क्या कहा है. पेरी कहती हैं कि वह नाना पाटेकर लेफ्ट फिल्म्स टू सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग द करगिल वॉर. तो फिर सवाल भी उठता है सामिन, जो बहुत अच्छे नेक होते हैं इंसान, क्या वो जंग को पसंद करते हैं कि शांति को? दो रास्ते उनके सामने होते हैं. अगर वो जंग में सर्व करते हैं तो वो जंग की हिमायत करते हैं, और अगर वो अच्छे होते हैं तो किसानों की हिमायत करते हैं. यहाँ पर वो दोनों ही थे. मिस्टर मेहता फ्रॉम एम्बू, आपने सैड न्यूज़ का कहा है. भास्कर पटेल फ्रॉम मैनचेस्टर, आपने भी अफसोस जाहिर किया. शनाज बट फ्रॉम तंजानिया, आपने भी अफसोस जाहिर किया है. नाना है टू सन्स, हिज एल्डर सन पास्ड अवे, अच्छा, एट एज ऑफ 2.5 ड्यू टू इलनेस, दुर्वसा पाटेकर, एंड यंग सन मल्हार पाटेकर, अच्छा. हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज मिथुन चक्रवर्ती, अच्छा, नाना पाटेकर का बेस्ट फ्रेंड था सना. थैंक यू सो मच.

0: मंजुला गोरा सिया ने कॉल किया, कहती हैं कि नाना पाटेकर का सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा है। कहती हैं आपको पता है कि बिस्किट की भी वो इज्जत करते थे। मैंने कहा वो कैसे? पार्ले जी, एक फिल्म में उन्होंने कहा कि बिस्किट पार्ले है, लेकिन इसको सिर्फ पार्ले नहीं कहना, पार्ले जी। कमाल है। और यहाँ पर हैं, माय नेम इज मुस्कान आमिर, आई फील सो सैड, रियली इमोशनल अबाउट आवर लेजेंड नाना पाटेकर, ही इज द बेस्ट एक्टर फॉर एवर, आई वॉच द मूवी कमाल धमाल मालामाल, इट वॉज वेरी फनी। वो देखें आप जो हैं मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि वो ह्यूमरस कैरेक्टर कर सकते थे, ट्रेजेडी के कैरेक्टर कर सकते थे, रोमांटिक भी कर सकते थे। बेशक उनकी लुक्स बिल्कुल नहीं थी ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल हैंडसम, पर जो उन्होंने किरदार निभाए, खूबसूरत से खूबसूरत नहीं निभा सकता था। सो आई एग्री विद यू मुस्कान, इट वॉज वेरी फनी एंड सम इमोशनल, लव दैट फिल्म। मी एंड माई फैमिली लव नाना पाटेकर एंड विल कीप लविंग हिम। ओम शांति नाना पाटेकर। क्या बात है मुस्कान आमिर, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज सुनकर, यू रियली वर हिज फैन। बहुत दुख हुआ है, सारी दुनिया को दुख हुआ है।
1: छोड़ दे पतंग मेरी, छोड़ दे नागर फिल्म दा, प्रदीप कुमार ते वजंती माला ते दूसरी सॉरी फॉर पाटेकर को, आका बहुत अच्छा सीगा एक्टर, उदिया अखा जदर चिबिची रोब हुंदा सीगा।
0: समिन कैसे इतने कामयाब हुए विद दोज लुक्स, जबकि लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं फिल्मी दुनिया में, लेकिन आप देखो कि किस तरह से उन्होंने टॉप किया है अपने हीरो के रोल्स में। वो कोई साइड एक्टर नहीं थे, कैरेक्टर एक्टर नहीं थे, हीरो भी थे।

0: और समय यहाँ पर ख़त्म करते हैं ट्रिब्यूट एक घंटा और 15 मिनट के बाद, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं।
1: नमस्कार, मनोहर पटेल किसुमुदी ने अपने नाना पाटेकर गुजरी गया ए बदल अपने दुख थयु छे, बहु अफसोस थयो छे। हवे मारे जानवू छे के फिल्म लाइन में ए हता त्यारथी अत्यार सुधी एमणे कोई गायन गायु छे पड़दा ऊपर? जो कोई ने खबर हो प्लीज इन्फॉर्म अस टू ईस्ट FM। थैंक यू। मनर पटेल फ्रॉम किसुमु।
0: मनर, मैंने कोशिश की और काफ़ी गाने हैं जो इन पर फिल्माए गए हैं, पर मुझे कुछ वो नहीं लग रहे कि मेरे प्रोग्राम में फिट होंगे, लेकिन इन्होंने गाए हैं पर्दे पर गाने, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं गाए।